0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
7: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
9: The Rush Hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
2: City FM 89.
1: On the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 8 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: HBO Max has released the first teaser for Stuart Fails to Save the Universe, the latest Big Bang Theory spin-off, with Kevin Sussman returning as comic book store owner Stuart. Stuart will mark the fourth series in the Big Bang universe, following young Sheldon and Georgie and Mandy's first marriage. The show will begin airing on July 23rd.
1: City FM 89, we're playing your song. You never bend, but in this weight, तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
6: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
1: Live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
7: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
8: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ। अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें। पीटीए
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
11: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
12: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
9: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.

0: पाकिस्तान।
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
2: सिटी एफएम 89,
3: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
4: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शरमीन।

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: You're listening to City FM 89.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
9: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
10: नई स्कीम
11: कमिटी
9: लाड बराए फरो
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
12: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
13: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें

0: पाकिस्तान
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 जीबी डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार Woohoo! جعلی نامی سکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں پی ٹی اے
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
4: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
7: प्लाट बनाए फरो,
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो। इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ With Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
10: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
11: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra smooth performance. Aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz. इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करें डिसीजन आपका जैज आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर
12: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2,500
13: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात
14: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू।

0: फायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामी शीरी।
2: गुलाब और संदल के खालिस सरकियात,
1: ये नेचुरल है,
3: ये तो बेहतर है।
1: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामी शीरी।
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ। अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें। पीटीए

0: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
1: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास. The old commute is broken. We're just here to help you override it.
2: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.

0: పాకిస్తాన్.
1: గులాబ్ اور سندل کے خالص ارکیات.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास.
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
8: We are
9: City FM 89.
8: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
4: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: Everybody go.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात क्योंकि टेलीनॉर है ना यार जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें
4: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
6: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
7: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
8: नई स्कीम
9: कमिटी
7: लाड बनाए फरो
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ With Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
10: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
11: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
12: A new era begins.
13: We are
2: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: Your drive along companion.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
4: No talk.
5: Just you
4: and the music.
5: Back to back
4: starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ. पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड.
3: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स.
4: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
5: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
5: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
9: City. City FM 89.
10: You're listening to
11: Non-stop hits.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड।
6: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
8: The Rush Hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
9: City FM 89.9.
10: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
11: Join me, Pepu Javeri, in the dark room, while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
12: We're playing your song.
13: You're listening to
14: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू नथिंग फोन 4A और 4A प्रो, स्लीक डिजाइन, अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस और अब जैज के साथ 5G रेडी। अब अवेलेबल है जैज एक्सपीरियंस सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइस के साथ। चाहे फुल पेमेंट करें या इजी पोस्ट पे बाय जैज इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करें, डिसीजन आपका। जैज, आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: City FM 89.
5: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
8: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
9: नई स्कीम,
10: कमिटी,
8: लाड बराए फरो।
10: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ। अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। Woohoo! जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें। पीटीए
13: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
11: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: पूरा हफ्ता राबता बरकरार, जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ, आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू है।
15: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
16: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
15: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
17: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत, टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
6: This show is brought to you by
8: You're listening to City FM 89.
9: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे. अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.
10: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू नथिंग फोन 4A और 4A प्रो। स्लीक डिजाइन, अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस और अब जैज के साथ 5G रेडी। अब अवेलेबल है जैज एक्सपीरियंस सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइस के साथ। चाहे फुल पेमेंट करें या इजी पोस्ट पे बाय जैज इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करें। डिसीजन आपका। जैज आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by
2: City FM 89.
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
4: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
2: This show is brought to you by
1: City FM 89.
4: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज़।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी, सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप, 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में। जैज मेरी सुपर पावर। ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो।
4: नई स्कीम
5: कमिटी
3: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक। इजी वाला बैंक।
6: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
7: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.
8: Life refreshing, kashi jami shiri.
9: Gulab aur sandal ke khalis arkiyat.
8: Ye nothing.

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
1: This show was brought to you by Jazz. City FM 89.
0: On the dial.
1: This show was brought to you by...
3: City FM 89.
4: Coming up next...
0: Future Sounds.
2: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: HBO Max has released the first teaser for Stuart Fails to Save the Universe, the latest Big Bang Theory spin-off, with Kevin Sussman returning as comic book store owner Stuart. Stuart will mark the fourth series in the Big Bang universe, following young Sheldon and Georgie and Mandy's first marriage. The show will begin airing on July 23rd.
2: City FM 89.
7: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
8: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: Pakistan.
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: Light, refreshing.
3: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
2: ये नेचुरल है
4: तो बेहतर है
2: लाइट रिफ्रेशिंग कर्शी जामिशीरी
5: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25GB डेटा बशमूल 10GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
8: Drinking a glass of water immediately after waking up kickstarts your metabolism.
9: Brought to you by
10: City FM 89.
11: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
12: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
13: A new era begins.
14: City FM 89.
15: Your drive-along companion.
14: You're listening to
16: Future Sounds.

0: to your song.
1: Only on City FM 89. It's 8:30 p.m.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
4: You're listening to City FM 89.
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
6: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
7: कशिदा में शीरी सब पीते हैं।
8: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी। सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप, 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS, और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में। जैज़ मेरी सुपर पावर। ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है।

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, and now, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
3: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
4: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: HBO Max has released the first teaser for Stuart Fails to Save the Universe, the latest Big Bang Theory spin-off, with Kevin Sussman returning as comic book store owner Stuart. Stuart will mark the fourth series in the Big Bang universe, following young Sheldon and Georgie and Mandy's first marriage. The show will begin airing on July 23rd.
3: City FM 89.
6: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
7: 89 We're playing your song.
6: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
3: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.
8: Discover fire new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
2: Drinking a glass of water immediately after waking up kickstarts your metabolism.
3: Brought to you by
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: On the dial. You're listening to
8: Future Sounds.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: You're listening to City FM 89.
6: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
5: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to
8: Future Sounds.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: When I grow up, I want to be strong.
3: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
1: I want to learn big things.
3: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
1: I want to be the fastest.
3: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
1: I want to grow up like everyone else.
3: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
4: Nurture today, strengthen tomorrow.
3: Act, a Dawn Media Initiative.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: City FM 89.
6: New talk. New talk. New talk. New talk. New talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: Select your song. Only on City FM 89.
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: Log on to facebook.com/cityfm89 and share your feedback.
1: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: City FM 89.
7: You're listening to
8: Non-stop hits.
9: Non-stop hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 11:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
7: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी